0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें।

0: के लिए जिस गति से प्रयास किए जा रहे हैं, यह बीमारी उससे कहीं अधिक रफ्तार से फैल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक संपर्क व जागरूकता पर प्रगति दर्ज की गई है। इबोला दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जिसमें संक्रमित होने वाले लगभग आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले मौजूदा इबोला प्रकोप के लिए जिम्मेदार बुंडी बुगियो वायरस के विरुद्ध अभी न तो कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है और न ही प्रभावी उपचार, जिससे हालात पर लगातार गंभीर चिंता बरकरार है। फिलहाल 1094 संक्रमण मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 277 लोगों की जानें गई हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यह वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में 20 संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा पट्टी में स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यह चिंता जताई गई कि मध्य पूर्व क्षेत्र में घटनाक्रम की वजह से वहां की मानवीय स्थिति पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपात राहत मामलों के लिए यूएन प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जोर देते हुए कहा कि विशाल मानवीय सहायता आवश्यकताओं के बीच आम फिलिस्तीनी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और राहत प्रयासों के लिए जल्द से जल्द धन मुहैया कराया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से अब तक वहां 265 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी दी कि यह बच्चों की मौत किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई, बल्कि वे अपने घरों, स्कूलों या फुटबॉल खेलते व मछलियां पकड़ते समय हमलों के शिकार बने। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को गोली मार दी गई, बमबारी में उनकी जानें गईं और फिर इजरायली बल द्वारा संचालित ड्रोन हमलों में भी मारे गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
1: संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी युद्धक गतिविधियों में मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इन हमलों में अभी तक लगभग 1000 फलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 3100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 265 बच्चों की मौतें भी शामिल हैं। गाजा में पिछले 8 महीनों से अधिक समय के दौरान औसतन हर दिन एक बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि गाजा में युद्ध ने वहां अभूतपूर्व मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है। इस समय गाजा में लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें से अनेक को बार बार अपना घर छोड़ना पड़ा है, जबकि 12 लाख से अधिक लोग अपने घरों से वंचित हो चुके हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच हिंसक टकराव को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते MOU का स्वागत किया है। समझौता ज्ञापन की शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
1: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते यानी MOU का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रोसी ने समझौता ज्ञापन के प्रकाशित मसौदे का संदर्भ देते हुए कहा है कि अब अमेरिकी और ईरानी सहयोगियों के साथ बैठकर ये तय करना है कि आगे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन

0: एक सकारात्मक घटनाक्रम है, अब तकनीकी काम शुरू होगा। खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को ये भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है।
1: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा पति पत्नी के अलगाव या वैवाहिक संबंध समाप्त करने की शर्तों पर जारी किए गए आधिकारिक आदेश से न केवल बाल विवाह को लाइसेंस मिलेगा, बल्कि महिलाओं और लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार व पीड़ा भरे रिश्तों को छोड़ पाना भी कठिन हो जाएगा। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन तालिबान ने अप्रैल में फरमान संख्या 18 के तहत ये नियम तय किए थे कि महिलाएं व लड़कियां किन परिस्थितियों में अपने पति और विवाह से अलग होने की मांग कर सकती हैं। इनमें गुमशुदगी, एक दूसरे से मेल नहीं बैठना, हठधार्मिकता और धार्मिक आधार समेत अन्य कारण हैं, जिनकी कानूनी व्याख्या नहीं की गई है। मगर मानव अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश में महिलाओं व लड़कियों के दुर्व्यवहार या शोषण का शिकार होने का जोखिम बढ़ेगा। इससे शिया अल्पसंख्यक और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
2: स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कम उम्र में विवाह अतीत की सरकारों के दौरान भी एक चुनौती रहा है, लेकिन इस नए फरमान से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह को वैधता मिलेगी। इस फरमान से वैवाहिक संबंधों समेत संरक्षकों द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी और घरेलू दुर्व्यवहार मामलों में लड़कियों के लिए अपनी व्यथा साझा करना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर असर डालने वाले कदम उठाए गए हैं। लड़कियों की माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई है, महिलाओं के कामकाज पर पाबंदियां थोपी गई हैं और लाखों अफगान महिलाएं व लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं।
1: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में शुक्रवार प्रातः संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में कार्डिनल मंडल की सभा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ख्रीस्तियाग अर्पित किया गया। इस अवसर पर अपने प्रवचन में संपूर्ण विश्व से रोम आए कार्डिनलों को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे अपने जीवन, अपने समुदाय, अपनी प्रेरितिक योजनाओं और अनुभवों और साथ ही समस्त खुशियों एवं दुखों को ईश्वर को अर्पित करें। संत पापा ने कहा कि हमारी भावनाएं और विचार एक साथ मिलकर प्रभु ख्रीस्त में एक प्रकाशमान केंद्र को पाते हैं, जो संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। उन्होंने कहा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सत्य हमारे जीवन में प्रवेश करता और हमें अंदर से नया बनाता है। उन्होंने कहा, ये दिव्य वरदान उस कार्डिनल मंडल सभा के लिए जीवन देने वाला पोषण भी है, जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार खुद इसके फल देने के लिए जमीन तैयार करते, जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, मुझमें रहो और मैं तुम में। उन्होंने कहा कि एक ओर यीशु और गुरु हमें चेतावनी देते हैं कि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी ओर चाहते हैं कि उनके शिष्य बहुत फल उत्पन्न करें, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह विकास को अवरुद्ध नहीं करता बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। संत योहन लिखते हैं, सच में हमेशा रहने वाला वचन इंसान बना ताकि सभी को जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। उन्होंने कहा कि विश्वास से शुरू होने के बाद यह जीवन छटाई की मुश्किलों से भी मजबूत होता है, क्योंकि यह ईश पिता की ध्यान से की गई देखभाल से पोषित होता है। संत पापा ने कहा कि विश्वास वह गुण है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कलीसिया को जीवन देता है, क्योंकि यह वह कृपा है जो एक ही दाखलता की डालियों को पोषण देती है। उन्होंने कहा कि जीवंत कलीसिया वह कलीसिया है जो हमारे हृदयों में उंडेले गए पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा विश्वास करती और बहुत फल उत्पन्न करती है। संत पापा ने कहा कि इस तरह जैसे ईश्वर की कृपा मनुष्यों की स्वतंत्रता से पहले आती है, वैसे ही कलीसिया का विश्वास हमारी अपनी आजादी से पहले आता है, और इसके लिए एक जोशीली गवाही की जरूरत होती है। इस मिशन की शुरुआत और अंत यीशु मसीह है। फिर संपूर्ण विश्व के लिए एकता में शांति के वरदान की याचना करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि भले ही हम सभी लोगों को उस विश्वास के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम सचमुच में स्वतंत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और झगड़े मानव परिवार को बुरी तरह घायल करते हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया और विश्व में ऐसी पहलों और अनुभवों की कमी नहीं जो मानव सम्मान, न्याय, कानून की व्यवस्था और मानवीयता के लिए सम्मान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सच में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उम्मीद का एक जरिया हैं, क्योंकि ये ईश्वर के कार्यों की खूबसूरती को दर्शाते हैं जिन्होंने हमारा सृजन दुनिया में अपनी महिमा की निशानी के तौर पर अपनी छवि और प्रतिरूप में किया है। संत पापा ने कहा कि इसीलिए युद्ध कभी भी मानवता के योग्य नहीं है, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिला, क्योंकि भले ही हम हाईटेक हथियारों से लैस हों, सृष्टिकर्ता ने हमें इंसानों के तौर पर झगड़ों को सुलझाने के लिए समझदारी और स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है। संत पापा ने कहा कि मानव परिवार की एकता सिर्फ एक जैव वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, यह एक नैतिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा, शांति न्याय का कर्तव्य है, क्योंकि हम एक मानव परिवार हैं, मैग्निफिका उमानिटास, एक शानदार मानवता जिसका मुखिया और उद्धारक यीशु ख्रीस्त हैं। संत पापा लियो 14वें ने वेनेजुएला के भूकंप पीड़ितों के लिए $1,00,000 का आरंभिक आपातकालीन अर्थदान प्रेषित किया है। भयानक भूकंप के बाद बचाव कार्य जारी हैं, जिसमें कम से कम 164 लोग मारे गए हैं और बहुत अधिक तबाही हुई है। भूकंप का समाचार पाने तथा आपदा का पूरा रूप सामने आने पर गुरुवार को संत पापा लियो 14वें ने वैटिकन के प्रेरितिक दानदाता कार्यालय के जरिए 1,00,000 यूरो का शुरुआती आपातकालीन अर्थदान भेजा है। परम धर्मपीठ का कहना है कि वेनेजुएला में परम धर्मपीठ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अल्बेर्टो ओर्टेगा मार्टिन और काराकास के महाधर्माध्यक्ष राउल बियोर्द कस्तिलो को भेजी गई उक्त राशि सहायता का मात्र पहला कदम है, जिसके बाद स्थानीय कलीसिया द्वारा बताई गई जरूरतों के अनुसार और मदद दी जाएगी। संत पापा लियो 14वें की फ्रीडम अंडर ग्रेस अर्थात अनुग्रह के अधीन स्वतंत्रता शीर्षक से आरंभिक रचनाएं आगामी सितंबर माह में पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाएंगी। फ्रीडम अंडर ग्रेस रिफ्लेक्शन ऑन द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दैट फॉर्म्ड मी शीर्षक से रचित उक्त कृति को पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के इमेज बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मूल रूप से यह पुस्तक इतालवी भाषा में वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इस पुस्तक में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट के उस समय के पत्र, प्रवचन और संबोधन शामिल हैं, जिन्हें संत पापा लियो ने 2001 से 2013 तक अगस्टिन धर्म समाज के महाध्यक्ष रहते हुए लिखा था। अगस्टिन धर्म समाज द्वारा संपादित की गई यह पुस्तक उस पुरुष विशेष की सोच और आध्यात्मिकता की झलक दिखाती है जो बाद में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रकाशक कैम्बल वॉर्टन के अनुसार हर अध्याय उस व्यक्ति की आध्यात्मिक गहराई और दृष्टि का एक झरोका है जो आगे चलकर संत पापा लियो 14वें बने। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को इताली तैराकी संघ और इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ मुलाकात में शरीर और आत्मा के विकास में खेल के महत्व की सराहना की। रोम के ऐतिहासिक फोरो इटालिको स्टेडियम में 26 से 28 जून तक 62वीं सेट्टे कॉली ट्रॉफी चैंपियनशिप जारी है। अपने प्रभाषण में संत पापा लियो 14वें ने कहा कि यदि खेल को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर और आत्मा के लिए औषधि का काम कर सकता है। उन्होंने कहा यह व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं को एकीकृत करता और खिलाड़ियों को समर्पण, प्रतिबद्धता, एकजुटता और ईमानदारी जैसे बहुत जरूरी मूल्यों की ओर ले जाता है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि तैरने का अभ्यास तब किया जाता है जब आप जल जैसे तत्व में डूबे रहते हैं जो इंसान को घेरे रहता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से उस पहलू की याद दिलाता है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ से बनाया है। जीने का मतलब है दूसरों के साथ और अपने आस पास के माहौल के साथ तालमेल बिठा कर चलना सीखना। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आगाह किया है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी हिस्से में 5 सप्ताह पहले इबोला वायरस के प्रकोप के बारे में पहली बार जानकारी सामने आने के बाद से प्रकोप को रोकने के लिए जिस गति से प्रयास किए जा रहे हैं, यह बीमारी उससे कहीं अधिक रफ्तार से फैल रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में संक्रमित व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक संपर्क व जागरूकता पर प्रगति दर्ज की गई है, इबोला दुनिया की सबसे घातक बीमारियों में से एक है, जिसमें संक्रमित होने वाले लगभग आधे लोगों की मृत्यु हो जाती है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में फैले मौजूदा इबोला प्रकोप के लिए जिम्मेदार बुंडी बुगियो वायरस के विरुद्ध अभी न तो कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध है और न ही प्रभावी उपचार, जिससे हालात पर लगातार गंभीर चिंता बरकरार है। फिलहाल 1094 संक्रमण मामलों की पुष्टि हो चुकी है और 277 लोगों की जानें गई हैं। UN स्वास्थ्य एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि यह वायरस अब भी तेजी से फैल रहा है। वहीं पड़ोसी देश युगांडा में 20 संक्रमण मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मौत होने की खबर है। गाजा पट्टी में स्थिति पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान यह चिंता जताई गई कि मध्य पूर्व क्षेत्र में घटनाक्रम की वजह से वहां की मानवीय स्थिति पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपात राहत मामलों के लिए UN प्रमुख टॉम फ्लेचर ने जोर देते हुए कहा कि विशाल मानवीय सहायता आवश्यकताओं के बीच आम फिलिस्तीनी अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते और राहत प्रयासों के लिए जल्द से जल्द धन मुहैया कराया जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम की घोषणा के बाद से अब तक वहां 265 फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है। यूनिसेफ प्रवक्ता ने जिनेवा में पत्रकारों को जानकारी दी कि यह बच्चों की मौत किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं हुई, बल्कि वे अपने घरों, स्कूलों या फुटबॉल खेलते व मछलियां पकड़ते समय हमलों के शिकार बने। उन्होंने बताया कि इन बच्चों को गोली मार दी गई, बमबारी में उनकी जाने गई और फिर इजरायली बल द्वारा संचालित ड्रोन हमलों में भी मारे गए। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: संयुक्त राष्ट्र की सहायता एजेंसियों ने गाजा की स्थिति पर नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद भी युद्धक गतिविधियों में मौतों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। इन हमलों में अभी तक लगभग 1000 फलिस्तीनी लोग मारे गए हैं और 3100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें 265 बच्चों की मौतें भी शामिल हैं। गाजा में पिछले 8 महीनों से अधिक समय के दौरान औसतन हर दिन एक बच्चे की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र और उसके साझीदार संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि गाजा में युद्ध ने वहां अभूतपूर्व मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है। इस समय गाजा में लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें से अनेक को बार बार अपना घर छोड़ना पड़ा है, जबकि 12 लाख से अधिक लोग अपने घरों से वंचित हो चुके हैं।
2: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच हिंसक टकराव को समाप्त करने पर सहमति बन गई है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते MOU का स्वागत किया है। समझौता ज्ञापन की शर्तों में सभी जहाजों के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना और ईरान पर लगे अमेरिकी व संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों में ढील देना शामिल है। इसके 14 बिंदुओं में सबसे पहले लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल व स्थायी रूप से समाप्त करने की बात कही गई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
3: संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए हुए शुरुआती समझौते यानी MOU का स्वागत किया है। एजेंसी दोनों पक्षों के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सत्यापन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम तय करने में मदद करने के लिए तैयार है। महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने समझौता ज्ञापन के प्रकाशित मसौदे का संदर्भ देते हुए कहा है कि अब अमेरिकी और ईरानी सहयोगियों के साथ बैठकर ये तय करना है कि आगे कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन एक सकारात्मक घटनाक्रम है, अब तकनीकी काम शुरू होगा। खबरों के अनुसार समझौता ज्ञापन में अधिकतम 60 दिनों की बातचीत के बाद एक अंतिम समझौते तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। बातचीत में ईरान के यूरेनियम संवर्धन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। ईरान को ये भी दोहराना होगा कि उसका परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है।
2: संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानव अधिकार विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन द्वारा पति पत्नी के अलगाव या वैवाहिक संबंध समाप्त करने की शर्तों पर जारी किए गए आधिकारिक आदेश से न केवल बाल विवाह को लाइसेंस मिलेगा बल्कि महिलाओं और लड़कियों के लिए दुर्व्यवहार व पीड़ा भरे रिश्तों को छोड़ पाना भी कठिन हो जाएगा। अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ प्रशासन तालिबान ने अप्रैल में फरमान संख्या 18 के तहत ये नियम तय किए थे कि महिलाएं व लड़कियां किन परिस्थितियों में अपने पति और विवाह से अलग होने की मांग कर सकती हैं। इनमें गुमशुदगी, एक दूसरे से मेल नहीं बैठना, हट धार्मिकता और धार्मिक आधार समेत अन्य कारण हैं, जिनकी कानूनी व्याख्या नहीं की गई है। मगर मानव अधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश में महिलाओं व लड़कियों के दुर्व्यवहार या शोषण का शिकार होने का जोखिम बढ़ेगा। इससे शिया अल्पसंख्यक और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर भी असर पड़ने की आशंका है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं पूजा यादव।
4: स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि कम उम्र में विवाह अतीत की सरकारों के दौरान भी एक चुनौती रहा है, लेकिन इस नए फरमान से ऐसा प्रतीत होता है कि बाल विवाह को वैधता मिलेगी। इस फरमान से वैवाहिक संबंधों समेत संरक्षकों द्वारा ताकत के गलत इस्तेमाल की आशंका बढ़ेगी और घरेलू दुर्व्यवहार मामलों में लड़कियों के लिए अपनी व्यथा साझा करना मुश्किल हो जाएगा। गौरतलब है कि अगस्त 2021 में सत्ता पर तालिबान की वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों पर असर डालने वाले कदम उठाए गए हैं। लड़कियों की माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबंध है, सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी सीमित कर दी गई है, महिलाओं के कामकाज पर पाबंदियां थोपी गई हैं और लाखों अफगान महिलाएं व लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गई हैं।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर में शुक्रवार प्रातः संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में कार्डिनल मंडल की सभा के उद्घाटन के उपलक्ष्य में ख्रीस्तियाग अर्पित किया गया। इस अवसर पर अपने प्रवचन में संपूर्ण विश्व से रोम आए कार्डिनलों को संत पापा ने आमंत्रित किया कि वे अपने जीवन, अपने समुदाय, अपनी प्रेरितिक योजनाओं और अनुभवों और साथ ही समस्त खुशियों एवं दुखों को ईश्वर को अर्पित करें। संत पापा ने कहा कि हमारी भावनाएं और विचार एक साथ मिलकर प्रभु ख्रीस्त में एक प्रकाशमान केंद्र को पाते हैं, जो संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ। उन्होंने कहा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सत्य हमारे जीवन में प्रवेश करता और हमें अंदर से नया बनाता है। उन्होंने कहा, ये दिव्य वरदान उस कार्डिनल मंडल सभा के लिए जीवन देने वाला पोषण भी है, जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार खुद इसके फल देने के लिए जमीन तैयार करते, जैसा कि संत योहन रचित सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु कहते हैं, मुझमें रहो और मैं तुम में। उन्होंने कहा कि एक ओर यीशु और गुरु हमें चेतावनी देते हैं कि मुझसे अलग तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरी ओर चाहते हैं कि उनके शिष्य बहुत फल उत्पन्न करें, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह विकास को अवरुद्ध नहीं करता बल्कि उसे प्रोत्साहित करता है। संत योहन लिखते हैं, सच में हमेशा रहने वाला वचन इंसान बना ताकि सभी को जीवन मिले और भरपूर जीवन मिले। उन्होंने कहा कि विश्वास से शुरू होने के बाद यह जीवन छटाई की मुश्किलों से भी मजबूत होता है, क्योंकि यह ईश पिता की ध्यान से की गई देखभाल से पोषित होता है। संत पापा ने कहा कि विश्वास वह गुण है जिसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जो कलीसिया को जीवन देता है, क्योंकि यह वह कृपा है जो एक ही दाखलता की डालियों को पोषण देती है। उन्होंने कहा कि जीवंत कलीसिया वह कलीसिया है जो हमारे हृदयों में उंडेले गए पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा विश्वास करती और बहुत फल उत्पन्न करती है। संत पापा ने कहा कि इस तरह जैसे ईश्वर की कृपा मनुष्यों की स्वतंत्रता से पहले आती है, वैसे ही कलीसिया का विश्वास हमारी अपनी आजादी से पहले आता है, और इसके लिए एक जोशीली गवाही की जरूरत होती है। इस मिशन की शुरुआत और अंत यीशु मसीह है। फिर संपूर्ण विश्व के लिए एकता में शांति के वरदान की याचना करते हुए संत पापा लियो ने कहा कि भले ही हम सभी लोगों को उस विश्वास के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम सचमुच में स्वतंत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और झगड़े मानव परिवार को बुरी तरह घायल करते हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया और विश्व में ऐसी पहलों और अनुभवों की कमी नहीं जो मानव सम्मान, न्याय, कानून की व्यवस्था और मानवीयता के लिए सम्मान की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि सच में ऐसे कई उदाहरण हैं जो उम्मीद का एक जरिया हैं, क्योंकि ये ईश्वर के कार्यों की खूबसूरती को दर्शाते हैं जिन्होंने हमारा सृजन दुनिया में अपनी महिमा की निशानी के तौर पर अपनी छवि और प्रतिरूप में किया है। संत पापा ने कहा कि इसीलिए युद्ध कभी भी मानवता के योग्य नहीं है, जिसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिला, क्योंकि भले ही हम हाईटेक हथियारों से लैस हों, सृष्टिकर्ता ने हमें इंसानों के तौर पर झगड़ों को सुलझाने के लिए

0: अन्नदाता कार्यालय के जरिए 1,00,000 यूरो का शुरुआती आपातकालीन अर्थदान भेजा है। परमधर्मपीठ का कहना है कि वेनेजुएला में परमधर्मपीठ के प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष अल्बेर्टो ओर्तेगा मार्टिन और काराकास के महाधर्माध्यक्ष राउल बियोर्द कस्तिलो को भेजी गई उक्त राशि सहायता का मात्र पहला कदम है, जिसके बाद स्थानीय कलीसिया द्वारा बताई गई जरूरतों के अनुसार और मदद दी जाएगी। संत पापा लियो 14वें की फ्रीडम अंडर ग्रेस अर्थात अनुग्रह के अधीन स्वतंत्रता शीर्षक से आरंभिक रचनाएं आगामी सितंबर माह में पहली बार अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाएंगी। फ्रीडम अंडर ग्रेस रिफ्लेक्शन ऑन द स्पिरिचुअल ट्रेडिशन दैट फॉर्म्ड मी शीर्षक से रचित उक्त कृति को पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के इमेज बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। मूल रूप से यह पुस्तक इतालवी भाषा में वैटिकन प्रकाशन केंद्र द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। इस पुस्तक में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट के उस समय के पत्र, प्रवचन और संबोधन शामिल हैं, जिन्हें संत पापा लियो ने 2001 से 2013 तक अगस्टिन धर्म समाज के महाध्यक्ष रहते हुए लिखा था। अगस्टिन धर्म समाज द्वारा संपादित की गई यह पुस्तक उस पुरुष विशेष की सोच और आध्यात्मिकता की झलक दिखाती है जो बाद में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष नियुक्त किए गए। पेंगुइन रैंडम हाउस क्रिश्चियन पब्लिशिंग ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रकाशक कैम्बल वॉर्टन के अनुसार हर अध्याय उस व्यक्ति की आध्यात्मिक गहराई और दृष्टि का एक झरोका है जो आगे चलकर संत पापा लियो 14वें बने। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को इताली तैराकी संघ और इंटरनेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ मुलाकात में शरीर और आत्मा के विकास में खेल के महत्व की सराहना की। रोम के ऐतिहासिक फोरो इटालिको स्टेडियम में 26 से 28 जून तक 62वीं सेट्टे कॉली ट्रॉफी चैंपियनशिप जारी है। अपने प्रभाषण में संत पापा लियो 14वें ने कहा कि यदि खेल को सही तरीके से अपनाया जाए तो यह शरीर और आत्मा के लिए औषधि का काम कर सकता है। उन्होंने कहा यह व्यक्ति के अलग अलग पहलुओं को एकीकृत करता और खिलाड़ियों को समर्पण, प्रतिबद्धता, एकजुटता और ईमानदारी जैसे बहुत जरूरी मूल्यों की ओर ले जाता है। संत पापा ने स्मरण दिलाया कि तैरने का अभ्यास तब किया जाता है जब आप जल जैसे तत्व में डूबे रहते हैं जो इंसान को घेरे रहता है। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से उस पहलू की याद दिलाता है जिसने हमें हमारी माँ के गर्भ से बनाया है। जीने का मतलब है दूसरों के साथ और अपने आस पास के माहौल के साथ तालमेल बिठा कर चलना सीखना। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।
1: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesanpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र

0: अमृत को कन्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, वर्तमान दुनिया की स्थिति में हम लोगों को अपनी चिंता में खोया और डूबा पाते हैं। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वह एक दूसरे के पास जाकर उसके दिल का हाल और कुशल क्षेम पूछ सके या स्वयं अपने दिल की बोझ को बतलाते हुए अपने को हल्का करे। लेकिन हमारे समय की ऐसी परिस्थिति में भी कुछ एक हैं जो अपने आप से बाहर जाते हुए उन व्यक्तियों के लिए अपना समय देते हैं जिन्हें वे ईश भक्त और धर्मी सज्जनों के रूप में पाते हैं। विश्वास, प्रेम और उदारता में उनका ऐसा करना उनके लिए ईश्वरीय आशीष और कृपाओं का स्रोत साबित होता है। श्रोताओं, वर्ष के 13वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों का संदर्भ कुछ ऐसा ही है। हम प्रभु वचनों में स्वागत किए जाने और दूसरों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने से हमारे लिए होने वाले चमत्कार की बात सुनते हैं। आइए हम प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में पूछें कि हम दूसरों के लिए कितने खुले रहते हैं। हम अपने जीवन में व्यक्तियों को, चाहे वे हमारे परिचित या अपरिचित ही क्यों ना हो, उनका स्वागत किस रूप में करते हैं? अतिथि सत्कार में मिलने वाले ईश्वरीय आशीष को क्या हमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हममें उदारता के भाव जागृत करें जिससे हम अपने हृदय को दूसरों के लिए खोल सकें, हम दूसरों के लिए अपने को दे सकें जिससे हम अपने को ईश्वरीय उपहारों के हकदार बना सकें। श्रोताओं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अतिथि देवो भव, मेहमान ईश्वर के प्रतिरूप होने की बात व्यक्त करता है। इसराइल के शूनेम की एक धनी महिला ने नबी इलियास का स्वागत किया, उसके लिए खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की, और उसके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए नबी ने उसे ईश्वरीय आशीष पुत्र रतन से भर दिया, यद्यपि उसका पति अपने में बूढ़ा हो चला था। यह हमारे लिए उस कथन को भी सत्यापित करता है कि जो मुक्त हस्त देता है, जो उदारता में अपने को देता है, वह ईश्वरीय कृपाओं का हकदार होता है। श्रोताओं, यह हम सबों को अपने को देने के भाव और दूसरों के प्रति अपने मनोभावों की परख करने का आह्वान करता है। शूनेम की धनी नारी को किसी ने यह निर्देश नहीं दिया कि वह नबी इलियास की देखरेख और सेवा करे, बल्कि उसने अपनी ओर से पहल करते हुए उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस धनी नारी के द्वारा किया गया निस्वार्थ सेवा उसके परिवार के लिए ईश्वरीय आशीष का कारण बनता है। श्रोताओं, हम में से हर कोई अपने जीवन में ईश्वर की आशीष पाने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह अपने में तब पूरी होती है जब हम अपने को प्रेम में ईश्वर के लिए उदारतापूर्ण हृदय से देते हैं। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए देने के भाव को और अधिक गहराई से देखने और समझने को मदद करता है। हमें सर्वप्रथम ईश्वर से सारी चीजें उपहार में मिली हैं। इस संदर्भ में संत पौलुस हमें मिले बपतिस्मा के दान का जिक्र करते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी मृत्यु में सहभागी करते और नए जीवन की सौगात प्रदान करते हैं। ईश्वर में हमें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि पुनरुत्थान का नया जीवन मिला है, जो हमें उनके संग दिव्य आनंद के भागीदार बनाता है। अतः हम सभी अपने जीवन की इस नवीनता को दूसरों के संग साझा करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह हमें अपने व्यक्तिगत परिधि से बाहर निकलकर अपने को सारी दुनिया हेतु खुला रखने का निमंत्रण देता है। श्रोताओं, अपने माता पिता भाई बहनों को ईश्वर से अधिक प्रेम करने वालों को मुक्तिदाता यीशु अपने अनुसरण के योग्य नहीं कहते हैं। यह निस्संदेह हमें अपने परिवार के प्रिय जनों से घृणा करने को नहीं कहता है। यीशु के इन वचनों पर चिंतन करने के माध्यम हम अपने में यही पाते हैं कि अपने प्रिय जनों से अधिक लगाव हमारे लिए ईश्वर के कार्य को निस्वार्थ और उदारता में करने हेतु बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। समर्पित जीवन के लोग धर्म संघी और धर्म बंधुओं के रूप में परिवारों के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव हमारे प्रेरित कार्यों को प्रभावित करते हैं। हम ईश प्रजा की सेवा करने के बदले परिवार के सेवक सेविकाएं बनकर रह जाते हैं। इसका परिणाम हमारे लिए यह होता है कि छोटी छोटी पारिवारिक चिंताएं और परेशानियां हमें आहत और परेशान करती हैं। कितने ही धर्म संघी और धर्म बहने ऐसे हैं जो शायद हर छोटी चीज घटनाओं और कार्यक्रमों के लिए दौड़ दौड़ कर अपने घरों को जाते हैं, मानो उनके बिना कार्य पूरे ही ना होते हों। यह अशक्ति और परिवारों से अत्यधिक लगाव धर्म संघ और धर्म समाज की प्रेरिताई को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसके लिए समर्पित लोगों के बारे में टीका टिप्पणी भी की जाती है। श्रोताओं, आज का प्रभु वचन हमें अपने दैनिक जीवन के क्रूस को वहन करने का आह्वान देता है। यह हमें आत्म त्याग करने को कहता है और यह हमारे लिए तब होता है जब हम उन चीजों का परित्याग करते हैं जो हमें अच्छी और प्यारी लगती हैं, जिनसे हमारा अत्यधिक लगाव है। जब हम अपने व्रतों के अनुसार अनुशासन में जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, वे चीजें जो हमारे लिए लत के समान हैं, अपनी सजगता में हम उन्हें कम करने का प्रयास करते तो हम आत्म त्याग करते हुए अपने क्रूस को वहन करने के योग्य होते हैं। यह हमें अपने को अपने तक सीमित रहने को नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए खुला रहने के योग्य बनाता है, जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में आते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें उदार हृदय होने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने को सबों के लिए खुला रख सकें जो हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की चाह लिए आते हैं।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 29 जून को कलीसिया के संरक्षक प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में सुबह 9:30 बजे समारोह ख्रिस्ता की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही पालिया को आशीष देते हुए उससे 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को प्रदान करेंगे। पोप लियो से पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्म अध्यक्षों में से 2 भारत के हैं। मदुराई के महाधर्म अध्यक्ष अंतोनी सामी साबरीमुत्तु और कलकत्ता के महाधर्म अध्यक्ष एलियस फ्रांक। समारोह में पोप लियो पालिया पर आशीष देंगे और पालिया ग्रहण करने से पहले महाधर्म अध्यक्ष प्रेरित संत पेत्रुस रोम की पौत्र प्रेरिती कलीसिया और कार्तिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी पोप की निष्ठा की शपथ लेंगे। यह एक वार्षिक समारोह है जब वर्ष के दौरान नियुक्त महाधर्म अध्यक्षों को पोप की ओर से पालिया प्रदान की जाती है। वैटिकन के पावर सिस्टम सभागार में असाधारण कंसिस्ट्री का दूसरा सत्र शांति पर केंद्रित था, जिसमें शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। कई दलों ने न्यायपूर्ण युद्ध धर्म सिद्धांत के तर्क में आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई और इसके बजाय पेशेवर आत्मरक्षा के अधिकार की बात की। 26 जून को पावर सिस्टम सभागार में आरंभ हुए असाधारण कंसिस्ट्री के दोपहर के सत्र की शुरुआत वेनेजुएला के दर्दनाक हालात और हाल में आए भूकंप के कई पीड़ितों के लिए प्रार्थना के साथ हुई। सत्ता की संस्कृति एवं प्यार की सभ्यता विषय वस्तु के इस सत्र में विश्व पत्र मैग्निफिका ह्यूमैनिटास के अध्याय 5 पर चिंतन किया गया। इसकी शुरुआत एक सामूहिक प्रार्थना से हुई और इसका संचालन कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने की, जिन्होंने विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मानुएल फर्नांडिस को शुरुआती भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें सत्र की शुरुआत में शामिल हुए और बाद में आम सभा के लिए वापस आए। सभा में 11 दलों ने रिपोर्ट पेश की, पहले समूह से 8 और दूसरे समूह से 3। वैटिकन प्रेस कार्यालय से जारी एक बयान अनुसार सभी ने आज के समय की चुनौतियों पर बात की और सत्ता की संस्कृति की अमानवीय शक्ति, इसकी वार्षिक पहुंच, शक्तिशाली लोगों के तर्क के हिसाब से चलने और युद्ध एवं ध्रुवीकरण को सामान्य बनाने के प्रलोभन पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि पर प्रतिभागियों ने शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों पर केंद्रित भाषा के जरिए कलीसिया के अंदर ही एक भरोसेमंद गवाही देने के महत्व पर भी बल दिया, अर्थात सुनने, माफ करने, मेल मिलाप, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और ठोस संकेत पर। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा झगड़ों में फंसे लोगों के दिलों को छू सकती है, युद्ध से हुए जख्मों को भर सकती है और कलीसिया के अंदर एकता की तलाश को बढ़ावा दे सकती है। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कलीसिया के अंदर एकता होना उसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। ऐसे समय में जब उदासीनता का वैश्वीकरण लोगों को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बना रहा है, हर व्यक्ति को शांति लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया।
1: विश्व भर से आए कार्डिनल 26 और 27 जून तक वाटिकन के संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में चल रहे कार्डिनल मंडल की असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग ले रहे हैं। कंसिस्ट्री शुक्रवार 26 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा के साथ शुरू हुई। इसके बाद उद्घाटन सत्र के लिए कार्डिनल संत पापा पॉल षष्ठम सभागार गए। पवित्र आत्मा के आह्वान के बाद कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे के भाषण और संत पापा के शुरुआती भाषण से सत्र शुरू किया गया। संत पापा लियो ने कार्डिनलों को हाल के महीनों में सहभागिता के जरिए कलीसिया में मेलजोल के अपने आमंत्रण को याद दिलाया, जिसमें हर सदस्य अपने करिश्मे और सेवा के अनुसार अपने मिशन में सहयोग करेगा। फिर उन्होंने उन 4 विषय पर विचार किया जिन पर कार्डिनल इन दो दिनों में फोकस करेंगे। सबसे पहले वे उस दुनिया के बारे में सोचेंगे जिसमें कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यह स्थिति जागरूकता उन्हें यीशु को पहचानने में मदद करेगी जो दुनिया की सड़कों पर चलते हैं और इतिहास में हमसे आगे चलते हैं। दूसरा, कार्डिनल शक्ति की संस्कृति और प्यार की सभ्यता के मतलब की जांच करेंगे। संत पापा ने कार्डिनलों को अपने स्थानीय कलीसियाओं को समझने के लिए विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास को एक चाबी के तौर पर लेने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे सत्र में वे इस बात की जांच करेंगे कि कलीसिया इंसानियत की भलाई के लिए क्या योगदान दे सकती है। चौथे सत्र में कार्डिनल सिनोडालिटी पर सिनोड के लगातार लागू होने पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतिम सत्र पिछले तीन बैठकों के विचारों को सिनोडालिटी के नजरिए से एक नजरिया, एक खुलापन और समझने की इच्छा के तौर पर एकत्रित करेगा। कलीसिया की अंदरूनी जिंदगी पर ध्यान देने के साथ साथ संत पापा ने कार्डिनलों को दुनिया को देखने और एक ही सवाल पूछने के लिए बुलाया। आज हम अपनी कलीसियाओं को ज्यादा ईमानदारी, आजादी और भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग की एक नई डॉक्यूमेंट्री लियो इन रोम 1 जुलाई को वाटिकन न्यूज के प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाली है, जिसमें संत पापा लियो 14वें के चुनाव से पहले के चुनाव से पहले रोम में बिताए गए सालों के बारे में बताया गया है। उधर 25 जून को न्यूयॉर्क में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद के खुले विवाद के लिए एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर के कई देश लड़ाई झगड़ों से प्रभावित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों और युद्ध के दूसरे कमजोर पीड़ितों की सुरक्षा के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाने की जरूरत है। उनकी तकलीफ पर प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और हर इंसान की ईश्वर की दी हुई इंसानी गरिमा का सम्मान दोनों का एक सूचक होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
0: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodisantpietro.va पर जरूर जाएं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, वर्तमान दुनिया की स्थिति में हम लोगों को अपनी चिंता में खोया और डूबा पाते हैं। आज किसी के पास इतना समय नहीं कि वह एक दूसरे के पास जाकर उसके दिल का हाल और कुशल क्षेम पूछ सके या स्वयं अपने दिल की बोझ को बतलाते हुए अपने को हल्का करे। लेकिन हमारे समय की ऐसी परिस्थिति में भी कुछ एक हैं जो अपने आप से बाहर जाते हुए उन व्यक्तियों के लिए अपना समय देते हैं जिन्हें वे ईश भक्त और धर्मी सज्जनों के रूप में पाते हैं। विश्वास, प्रेम और उदारता में उनका ऐसा करना उनके लिए ईश्वरीय आशीष और कृपाओं का स्रोत साबित होता है। श्रोताओं, वर्ष के 13वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन पाठों का संदर्भ कुछ ऐसा ही है। हम प्रभु वचनों में स्वागत किए जाने और दूसरों के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलने से हमारे लिए होने वाले चमत्कार की बात सुनते हैं। आइए हम प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में पूछें कि हम दूसरों के लिए कितने खुले रहते हैं। हम अपने जीवन में व्यक्तियों को, चाहे वे हमारे परिचित या अपरिचित ही क्यों ना हो, उनका स्वागत किस रूप में करते हैं। अतिथि सत्कार में मिलने वाले ईश्वरीय आशीष को क्या हमने कभी अपने जीवन में अनुभव किया है?
1: यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने पुत्र या अपनी पुत्री को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। जिसने अपना जीवन सुरक्षित रखा है वह उसे खो देगा, और जिसने मेरे कारण अपना जीवन खो दिया है वह उसे सुरक्षित रख सकेगा। जो तुम्हारा स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। जो नबी का इसलिए स्वागत करता है कि वह नबी है वह नबी का पुरस्कार पाएगा, और जो धर्मी का इसलिए स्वागत करता है कि वह धर्मी है वह धर्मी का पुरस्कार पाएगा।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हममें उदारता के भाव जागृत करे जिससे हम अपने हृदय को दूसरों के लिए खोल सकें, हम दूसरों के लिए अपने को दे सकें जिससे हम अपने को ईश्वरीय उपहारों के हकदार बना सकें। श्रोताओं, राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए अतिथि देवो भव, मेहमान ईश्वर के प्रतिरूप होने की बात व्यक्त करता है। इसराइल के शूनेम की एक धनी महिला ने नबी इलियास का स्वागत किया, उसके लिए खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की, और उसके इस उदारतापूर्ण कार्य के लिए नबी ने उसे ईश्वरीय आशीष पुत्र रतन से भर दिया, यद्यपि उसका पति अपने में बूढ़ा हो चला था। यह हमारे लिए उस कथन को भी सत्यापित करता है कि जो मुक्त हस्त देता है, जो उदारता में अपने को देता है, वह ईश्वरीय कृपाओं का हकदार होता है। श्रोताओं, यह हम सबों को अपने को देने के भाव और दूसरों के प्रति अपने मनोभावों की परख करने का आह्वान करता है। शूनेम की धनी नारी को किसी ने यह निर्देश नहीं दिया कि वह नबी इलियास की देखरेख और सेवा करे, बल्कि उसने अपनी ओर से पहल करते हुए उन्हें अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और उनकी सेवा शुश्रूषा की। उस धनी नारी के द्वारा किया गया निस्वार्थ सेवा उसके परिवार के लिए ईश्वरीय आशीष का कारण बनता है। श्रोताओं, हम में से हर कोई अपने जीवन में ईश्वर की आशीष पाने की चाह रखते हैं। हमारी यह चाह अपने में तब पूरी होती है जब हम अपने को प्रेम में ईश्वर के लिए उदारतापूर्ण हृदय से देते हैं। आज का दूसरा पाठ हमारे लिए देने के भाव को और अधिक गहराई से देखने और समझने को मदद करता है। हमें सर्वप्रथम ईश्वर से सारी चीजें उपहार में मिली हैं। इस संदर्भ में संत पौलुस हमें मिले बपतिस्मा के दान का जिक्र करते हैं, जिसके द्वारा ईश्वर हमें अपनी मृत्यु में सहभागी करते और नए जीवन की सौगात प्रदान करते हैं। ईश्वर में हमें सिर्फ जीवन नहीं बल्कि पुनरुत्थान का नया जीवन मिला है, जो हमें उनके संग दिव्य आनंद के भागीदार बनाता है। अतः हम सभी अपने जीवन की इस नवीनता को दूसरों के संग साझा करने के लिए बुलाए जाते हैं। यह हमें अपने व्यक्तिगत परिधि से बाहर निकलकर अपने को सारी दुनिया हेतु खुला रखने का निमंत्रण देता है। श्रोताओं, अपने माता पिता भाई बहनों को ईश्वर से अधिक प्रेम करने वालों को मुक्तिदाता यीशु अपने अनुसरण के योग्य नहीं कहते हैं। यह निस्संदेह हमें अपने परिवार के प्रिय जनों से घृणा करने को नहीं कहता है। यीशु के इन वचनों पर चिंतन करने के माध्यम हम अपने में यही पाते हैं कि अपने प्रिय जनों से अधिक लगाव हमारे लिए ईश्वर के कार्य को निस्वार्थ और उदारता में करने हेतु बाधा उत्पन्न करता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। समर्पित जीवन के लोग धर्म संघी और धर्म बंधुओं के रूप में परिवारों के प्रति हमारा अत्यधिक लगाव हमारे प्रेरित कार्यों को प्रभावित करते हैं। हम ईश प्रजा की सेवा करने के बदले परिवार के सेवक सेविकाएं बनकर रह जाते हैं। इसका परिणाम हमारे लिए यह होता है कि छोटी छोटी पारिवारिक चिंताएं और परेशानियां हमें आहत और परेशान करती हैं। कितने ही धर्म संघी और धर्म बहनें ऐसे हैं जो शायद हर छोटी चीज घटनाओं और कार्यक्रमों के लिए दौड़ दौड़ कर अपने घरों को जाते हैं, मानो उनके बिना कार्य पूरे ही ना होते हों। यह अशक्ति और परिवारों से अत्यधिक लगाव धर्म संघ और धर्म समाज की प्रेरिताई को बहुत अधिक प्रभावित करता है, जिसके लिए समर्पित लोगों के बारे में टीका टिप्पणी भी की जाती है। श्रोताओं, आज का प्रभु वचन हमें अपने दैनिक जीवन के क्रूस को वहन करने का आह्वान देता है। यह हमें आत्म त्याग करने को कहता है और यह हमारे लिए तब होता है जब हम उन चीजों का परित्याग करते हैं जो हमें अच्छी और प्यारी लगती हैं, जिनसे हमारा अत्यधिक लगाव है। जब हम अपने व्रतों के अनुसार अनुशासन में जीवन यापन करने की कोशिश करते हैं, वे चीजें जो हमारे लिए लत के समान हैं, अपनी सजगता में हम उन्हें कम करने का प्रयास करते तो हम आत्म त्याग करते हुए अपने क्रूस को वहन करने के योग्य होते हैं। यह हमें अपने को अपने तक सीमित रहने को नहीं बल्कि सारी मानव जाति के लिए खुला रहने के योग्य बनाता है, जो हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में आते हैं। आइए हम मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि वे हमें उदार हृदय होने की कृपा प्रदान करें, जिससे हम अपने को सबों के लिए खुला रख सकें जो हमारे जीवन में ईश्वरीय प्रेम की चाह लिए आते हैं।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें 29 जून को कलीसिया के संरक्षक प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पॉलुस के महापर्व के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजा घर में सुबह 9:30 बजे समारोह ख्रिस्ता की अध्यक्षता करेंगे। साथ ही पालिया को आशीष देते हुए उससे 35 नए महाधर्म अध्यक्षों को प्रदान करेंगे। पोप लियो से पालिया ग्रहण करने वाले 35 नए महाधर्म अध्यक्षों में से 2 भारत के हैं। मदुराई के महाधर्म अध्यक्ष अंतोनी सामी साबरीमुत्तु और कलकत्ता के महाधर्म अध्यक्ष एलियस फ्रांक। समारोह में पोप लियो पालिया पर आशीष देंगे और पालिया ग्रहण करने से पहले महाधर्म अध्यक्ष प्रेरित संत पेत्रुस रोम की पौत्र प्रेरिती कलीसिया और कार्तिक कलीसिया के सर्वोच्च अधिकारी पोप की निष्ठा की शपथ लेंगे। यह एक वार्षिक समारोह है जब वर्ष के दौरान नियुक्त महाधर्म अध्यक्षों को पोप की ओर से पालिया प्रदान की जाती है। वैटिकन के पावर सिस्टम सभागार में असाधारण कंसिस्ट्री का दूसरा सत्र शांति पर केंद्रित था, जिसमें शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। कई दलों ने न्यायपूर्ण युद्ध धर्म सिद्धांत के तर्क में आगे बढ़ने की आवश्यकता बताई और इसके बजाय पेशेवर आत्मरक्षा के अधिकार की बात की। 26 जून को पावर सिस्टम सभागार में आरंभ हुए असाधारण कंसिस्ट्री के दोपहर के सत्र की शुरुआत वेनेजुएला के दर्दनाक हालात और हाल में आए भूकंप के कई पीड़ितों के लिए प्रार्थना के साथ हुए। सत्ता की संस्कृति एवं प्यार की सभ्यता विषय वस्तु के इस सत्र में विश्व पत्र मैनिफिका ह्यूमैनिटास के अध्याय 5 पर चिंतन किया गया। इसकी शुरुआत एक सामूहिक प्रार्थना से हुई और इसका संचालन कार्डिनल पाब्लो वर्जिलियो डेविड ने की, जिन्होंने विश्वास के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल विक्टर मैनुएल फर्नांडिस को शुरुआती भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। पोप लियो 14वें सत्र की शुरुआत में शामिल हुए और बाद में आम सभा के लिए वापस आए। सभा में 11 दलों ने रिपोर्ट पेश की, पहले समूह से 8 और दूसरे समूह से 3। वैटिकन प्रेस कार्यालय से जारी एक बयान अनुसार सभी ने आज के समय की चुनौतियों पर बात की और सत्ता की संस्कृति की अमानवीय शक्ति, इसकी वार्षिक पहुंच, शक्तिशाली लोगों के तर्क के हिसाब से चलने और युद्ध एवं ध्रुवीकरण को सामान्य बनाने के प्रलोभन पर जोर दिया। इस पृष्ठभूमि पर प्रतिभागियों ने शांति और प्यार की सभ्यता बनाने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों पर केंद्रित भाषा के जरिए कलीसिया के अंदर ही एक भरोसेमंद गवाही देने के महत्व पर भी बल दिया, अर्थात सुनने, माफ करने, मेल मिलाप, पुनर्स्थापनात्मक न्याय और ठोस संकेत पर। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा झगड़ों में फंसे लोगों के दिलों को छू सकती है, युद्ध से हुए जख्मों को भर सकती है और कलीसिया के अंदर एकता की तलाश को बढ़ावा दे सकती है। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कलीसिया के अंदर एकता होना उसकी विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। ऐसे समय में जब उदासीनता का वैश्वीकरण लोगों को दूसरों के दुख के प्रति संवेदनशील नहीं बना रहा है, हर व्यक्ति को शांति लाने की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया।
1: विश्व भर से आए कार्डिनल 26 और 27 जून तक वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम सभागार में चल रहे कार्डिनल मंडल की असाधारण सभा कंसिस्ट्री में भाग ले रहे हैं। कंसिस्ट्री शुक्रवार 26 जून को संत पेत्रुस महागिरजाघर में संत पापा लियो 14वें की अध्यक्षता में पवित्र मिसा के साथ शुरू हुई। इसके बाद उद्घाटन सत्र के लिए कार्डिनल संत पापा पॉल सिस्टम सभागार गए। पवित्र आत्मा के आह्वान के बाद कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे के भाषण और संत पापा के शुरुआती भाषण से सत्र शुरू किया गया। संत पापा लियो ने कार्डिनलों को हाल के महीनों में सहभागिता के जरिए कलीसिया में मेलजोल के अपने आमंत्रण को याद दिलाया, जिसमें हर सदस्य अपने करिश्मे और सेवा के अनुसार अपने मिशन में सहयोग करेगा। फिर उन्होंने उन 4 विषय पर विचार किया जिन पर कार्डिनल इन दो दिनों में फोकस करेंगे। सबसे पहले वे उस दुनिया के बारे में सोचेंगे जिसमें कलीसिया को सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया गया है। यह स्थिति जागरूकता उन्हें यीशु को पहचानने में मदद करेगी जो दुनिया की सड़कों पर चलते हैं और इतिहास में हमसे आगे चलते हैं। दूसरा, कार्डिनल शक्ति की संस्कृति और प्यार की सभ्यता के मतलब की जांच करेंगे। संत पापा ने कार्डिनलों को अपने स्थानीय कलीसियाओं को समझने के लिए विश्व पत्र मैग्निफिका उमानितास को एक चाबी के तौर पर लेने के लिए आमंत्रित किया। तीसरे सत्र में वे इस बात की जांच करेंगे कि कलीसिया इंसानियत की भलाई के लिए क्या योगदान दे सकती है। चौथे सत्र में कार्डिनल सिनोडालिटी पर सिनोड के लगातार लागू होने पर विचार करेंगे। संत पापा लियो ने कहा कि यह अंतिम सत्र पिछले तीन बैठकों के विचारों को सिनोडालिटी के नजरिए से एक नजरिया, एक खुलापन और समझने की इच्छा के तौर पर एकत्रित करेगा। कलीसिया की अंदरूनी जिंदगी पर ध्यान देने के साथ साथ संत पापा ने कार्डिनलों को दुनिया को देखने और एक ही सवाल पूछने के लिए बुलाया। आज हम अपनी कलीसियाओं को ज्यादा ईमानदारी, आजादी और भरोसे के साथ सुसमाचार का प्रचार करने में कैसे मदद कर सकते हैं। उधर वाटिकन संचार विभाग की एक नई डॉक्यूमेंट्री लियो इन रोम 1 जुलाई को वाटिकन न्यूज के प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाली है, जिसमें संत पापा लियो 14वें के चुनाव से पहले रोम में बिताए गए सालों के बारे में बताया गया है। उधर 25 जून को न्यूयॉर्क में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद के खुले विवाद के लिए एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक मिशन ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर के कई देश लड़ाई झगड़ों से प्रभावित हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बच्चों और युद्ध के दूसरे कमजोर पीड़ितों की सुरक्षा के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाने की जरूरत है। उनकी तकलीफ पर प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता और हर इंसान की ईश्वर की दी हुई इंसानी गरिमा का सम्मान दोनों का एक सूचक होगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।
0: आइए हम मिलकर संत पापा के साथ चलें। संत पापा की प्रेरिताएं शांति, आशा, करुणा में मदद करें। संत पापा का समर्थन करें। संत पेत्रुस के पुण्य कार्य हेतु दान करें। वेबसाइट www.obolodesantpietro.va पर जरूर जाएं।